सकारात्मक मार्गतर्फ अग्रसर गराउने यो प्रभातीय घडीमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौ भक्ति भावले ओतप्रोत प्रस्तुति उपासना। उपासना अन्तर्गत आज हामी यहाँहरू समक्ष राख्दैछौ भक्ति संगीत निरन्तर।

0: इंडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहियो
1: मलाई फ्रॉक
2: मलाई पनि सूट
3: अनि मलाई